0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। बुहिरा रूम में कब्रस के साहल के करीब 260 से जायद अफराद को ले जाने वाली एक कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और 20 से जायद लापता हो गए हैं। मकामी जराए इब्लाग का कहना है कि ये कश्ती शिमाली कब्रस में केरिनिया की बंदरगाह से निकलकर मुखालिफ साहिल पर तुर्की की तरफ जा रही थी, ये इतवार की दोपहर को उलट गई। समंदर में हेलीकॉप्टर्स और दीगर वसाइल की मदद से तलाश और बचाव की कार्रवाई जारी है। जराए इब्लाग ने हुकाम के हवाले से बताया है कि 7 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है, जबकि 23 लापता हैं। इत्तलात के मुताबिक कश्ती की बंदरगाह से रवानगी के फौरन बाद इसमें पानी भरना शुरू हो गया था। मकामी हुकाम इसके असबाब की छानबीन कर रहे हैं। आइसलैंड में लोगों ने इस तस्वाबे राय में वोट देकर यूरोपीय यूनियन में शमूलियत पर मुजाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। मकामी जराए इब्लाग का कहना है कि हफ्ते के रोज के इस तस्वाबे राय में डाले गए वोटों की गिनती से पता चलता है कि 52.8% इस तजवीज के खिलाफ, जबकि 47.2% इस तजवीज के हक में थे। 2024 में बनने वाली आइसलैंड की मखलूत हकूमत ने ये रेफरेंडम कराया है। मगरबी जराए इब्लाग ने खबर दी है कि हकूमत के इस इकदाम का एक मुहर्रिक नॉर्डिक खित्ते के इर्द गिर्द बदलता हुआ सलामती माहौल था, जहां आइसलैंड वाकई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने डेनमार्क के ग्रीनलैंड खुद मुख्तार इलाके पर कब्जा करने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। ग्रीनलैंड भी नॉर्डिक खित्ते में वाकई है। यूरोपीय यूनियन की रुकनियत के हामी उम्मीद कर रहे थे कि अगर आइसलैंड ने यूरोपीय यूनियन में शमूलियत इख्तियार कर ली और यूरो मुतारिफ कराया तो उसकी मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। तहम खदशात बरकरार है कि यूरोपीय यूनियन से इल्हाक आइसलैंड की माहीगीरी की आम सनत पर पाबंदियों का बाइस बन सकता है। आइसलैंड ने अपनी मईशत की तामीर नौ की खातिर 2009 में यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन इस इल्हाक के बारे में मुहतात हुकूमत के इकतदार में आने के बाद रुकनियत के मुजाकरात मुअत्तल कर दिए गए थे। जापान की बुलंदतरीन चोटी माउंट फूजी की हाइकिंग पगडंडी पर बेहोश पाए जाने वाले इंडोनेशियाई शख्स की मौत हो गई है। 57 साल मस्कूरा शख्स हफ्ते के रोज कोह पैमाई टूर में हिस्सा ले रहा था। पुलिस का कहना है कि वो सुबह 11 बजे के करीब 5वें स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन खाने के वक्फे के बाद तयशुदा मकाम पर नहीं पहुंचा। कहा जाता है कि ये टूर उसके बगैर दोबारा शुरू हो गया। कोह पैमाओ ने शाम 5 बजे के करीब 7वें स्टेशन पर हाइकिंग पगडंडी पर इस शख्स को मुंह के बल बेहोश पड़े पाया। एक पहाड़ी हट के अमले को इसकी इतला दी गई और इसे 5वें स्टेशन पर लाया गया। बादशाह इसे फूजी कावागुची को कस्बे के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां इसे मुर्दा करार दे दिया गया। खबर किया जाता है कि इसकी मौत दिल के आरजे से हुई है।
1: अब आज की आम खबरों की चंद सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। नेपाल में बुध के शदीद सैलाब के बाद लापता अफराद की तादाद 1.5 गुना बढ़कर 4,700 से ज्यादा हो गई है, जबकि 900 से जायद अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। चीन के तिब्बत खुदमुख्तार इलाके में मुकामी हुकाम का कहना है कि एक ग्लेशियर गिरने से नेपाल और चीन की सरहद के साथ वाके इलाकों में सैलाब आया। अमरीकी अफवाज ने आबनाए हुर्मुज़ के जजीरे लाराक पर 2 ईरानी रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 1 सितंबर मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। नेपाल चीन सीमा पर अचानक आई प्रलयकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1003 हो गई है। बचाव कर्मी 4,400 से अधिक लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन भारी मशीनरी के अभाव में उनके प्रयास बाधित हो रहे हैं। मंगलवार को नेपाल के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार की बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। 5 जापानी नागरिकों सहित 3,900 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। वहीं सीमा के दूसरी ओर चीन के सरकारी मीडिया ने अपने यहां मृतकों की संख्या 16 और लापता लोगों की संख्या 540 से अधिक बताई है। नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में सेना और पुलिस के लगभग 10,000 जवान तैनात किए गए हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे को पहुंचे भारी नुकसान और मलबा हटाने वाली भारी मशीनरी के अभाव में तलाश व बचाव कार्य धीमी गति से चल रहे हैं। नेपाल के रसुआ और नुवाकोट जिलों में बचाव कार्य जारी है, जहां पन बिजली घरों में 900 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच करीब एक महीने में पहली बार हुए हमलों के बाद तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में चिंता बढ़ती जा रही है कि लड़ाई और तेज हो सकती है। फॉक्स न्यूज़ ने सोमवार को खबर दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन इंटरव्यू में उनसे कहा कि जॉर्डन में अमेरिकी अड्डों पर हुए ईरानी हमलों का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ईरान को करारा जवाब देने का संकल्प लिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि उनके साथ किसी समझौते की उम्मीद की जा सकती है। उधर ईरानी मीडिया ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के हवाले से बताया कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एक अवैध बड़ा टैंकर बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया है, लेकिन अमरीका की केंद्रीय कमान ने IRGC के दावों को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी जहाज बारूदी सुरंग की चपेट में नहीं आया है। इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने उत्तरी कैरोलिना के एशविल में आयोजित वित्त मंत्रियों की G20 बैठक में ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों के बारे में पत्रकारों से बात की। गौरतलब है कि अमेरिका इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। उन्होंने कहा, वे इन प्रतिबंधों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अगर आप ईरानी नेताओं के पिछले 10 दिनों के बयानों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि वे अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर सदमे में हैं। बेसर ने कहा कि ईरानी नेता आर्थिक रूप से पिछड़ने के कारण हिंसक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था का पतन होना ज़रूरी नहीं है, सरकार को बस होश में आने की ज़रूरत है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने किर्गिस्तान में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पेजेशकियान राजनयिक समाधान तलाश रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान अमेरिका के साथ हुए समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए तैयार है, बशर्ते अमेरिका भी अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करे। अमेरिका G20 के वित्तीय प्रमुखों की बैठक की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा की जा रही है। वैश्विक आर्थिक जोखिम और उनसे निपटने के तरीके शुरुआती दौर की चर्चा के मुख्य विषय रहे। उत्तरी कैरोलिना के एशविल शहर में आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक के दौरान अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। बेसेंट ने कहा, आज यहाँ हमारा लक्ष्य विकास का अपना संदेश दोहराना है, क्योंकि दुनिया कर्ज में डूबी हुई है। वैश्विक वित्तीय संकट और कोविड दोनों के बाद इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका विकास ही है। उन्होंने विश्वास जताया कि कई नेता इस विचार के प्रति सकारात्मक होंगे। ये बैठक अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के साए में की जा रही है। प्रतिभागियों ने ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से जुड़ी मुद्रास्फीति के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की चिंता
और इस जोखिम से निपटने के उपायों पर चर्चा की। माना जा रहा है कि उन्होंने अहम खनिज संसाधनों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में भी बात की। G7 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक भी आयोजित की जा रही है। माना जाता है कि वे ईरान पर अमेरिका के नए आर्थिक प्रतिबंधों और वित्तीय तंत्रों पर उन्नत AI मॉडलों के खतरों पर भी चर्चा करेंगे।

0: कर व्यवसायों का विस्तार करने के लिए विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि एआई के बढ़ते प्रचलन के बीच डाटा सेंटरों की वैश्विक मांग में वृद्धि देखी जा रही है। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक अमेरिका स्थित एक ऊर्जा संबंधी कंपनी का लगभग 220 अरब येन यानी लगभग 1.4 अरब डॉलर में अधिग्रहण करने जा रही है। ये अधिग्रहण ऐसे समय में होने जा रहा है जब इंजीनियर डाटा सेंटरों द्वारा बिजली की खपत कम करने के प्रयासों में जुटे हैं। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के अनुसार इस अमरीकी कंपनी का सॉफ्टवेयर बिजली की खपत की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है और मित्सुबिशी बिजली हासिल करने व वितरण करने के उपकरणों में विशेषज्ञता रखती है। दोनों कंपनियों की विशेषताएं घरेलू और विदेशी स्तर पर उसके डाटा सेंटर व्यवसायों को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एक अधिकारी ने कुशल ऊर्जा उपयोग की बढ़ती आवश्यकता की ओर इशारा करते हुए कहा कि डाटा सेंटरों, कारखानों और इमारतों में इस तकनीक की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक हिस्से पुर्जों की निर्माता कंपनी TDK डाटा सेंटरों के लिए प्रशीतन उपकरणों की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से हिस्से पुर्जों की एक अमरीकी कंपनी का अधिग्रहण करने जा रही है। उधर हिताची ने घोषणा की है कि वो एक कनाडाई कंपनी का अधिग्रहण करने जा रही है जो डाटा सेंटर के ट्रांसफॉर्मर के हिस्से पुर्जे बनाती है।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 27वें पाठ में ये पूछना सीखेंगे कि कई विकल्पों में से सबसे अच्छा कौन सा है।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम आज टोक्यो में रामेन की एक प्रसिद्ध दुकान में आई है। हारूसान हाउस का निवासी काइतो भी उसके साथ है। रेस्तरां में ऑर्डर देते समय ताम को यूकी की बात याद आई। यूकी एक जापानी छात्र है जो संगीत का अध्ययन कर रहा है और ताम से उसकी मुलाकात वियतनाम में स्वयं सेवकों के रूप में काम करते हुए हुई थी।
0: तो आइए सुनते हैं 27वें पाठ की बातचीत।
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले दुकानदार ने ताम और काइतो से कहा,
4: गोचुमों वा,
0: ऑर्डर देना चाहेंगे।
1: फिर काइतो ने ताम से पूछा,
4: ताम-सान, नानी सुरु?
0: ताम, क्या लोगी?
1: ताम को समझ नहीं आया कि कौन सा व्यंजन चुने, इसलिए उसने काइतो से पूछा,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
1: सबसे स्वादिष्ट कौन सा है?
0: काइतो ने जवाब दिया,
4: मिसो रामेन गा ओसुसुमे दा यो।
0: मिसो रामेन बढ़िया होता है।
1: ताम सोचने लगी,
3: मिसो रामेन।
0: तभी उसे वियतनाम में यूकी से हुई बातचीत याद आई।
2: निहोन नो रामेन वा ओइशी यो।
0: जापानी रामेन स्वादिष्ट होता है।
2: बोकु वा मिसो रामेन गा सुकी नांदा।
0: मुझे मिसो रामेन पसंद है।
1: तो ताम ने दुकानदार से कहा,
3: वताशी मिसो रामेन नी शिमास।
1: मैं मिसो रामेन लूंगी।
0: लगता है मिसो रामेन के साथ ताम की कुछ पुरानी यादें भी लौट आई हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का,
1: यानी

0: सबसे स्वादिष्ट कौन सा है? ये वाक्य सीख कर आप पूछ सकेंगे कि तीन या अधिक चीजों में से सबसे बढ़िया कौन सी चीज है।
1: इस वाक्य में
2: दोरे
1: का अर्थ है कौन सा, उसके बाद आया है गा, जिससे पता चलता है कि
2: दोरे
1: इस वाक्य का विषय है।
2: इचिबांग
0: का अर्थ है पहला नंबर या सबसे, और
2: ओइशी
0: का अर्थ है स्वादिष्ट, इसलिए
2: इचिबांग ओइशी
0: का अर्थ है सबसे स्वादिष्ट।
1: अंत में लगा है
2: देस का
1: और अंतिम ध्वनि का सुर ऊंचा है, जिसका मतलब है कि ये प्रश्न है।
0: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि तीन या अधिक चीजों में से किसी एक को किसी विशेषता के आधार पर दूसरी चीजों की तुलना में सबसे आगे बताते समय
2: इचिबांग
0: का उपयोग होता है। जैसे अगर आप कहना चाहते हो सबसे स्वादिष्ट, तो
2: ओइशी
0: यानी स्वादिष्ट के पहले
2: इचिबांग
0: लगाकर बनेगा
2: इचिबांग ओइशी।
1: अगर आप कई चीजों में से किसी एक के बारे में पूछना चाहते हो तो वाक्य के शुरू में कहेंगे
2: दोरे गा इचिबांग।
1: इसमें
2: दोरे
1: प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है कौन सा।
0: अब अगर आपको पूछना है कि सबसे स्वादिष्ट कौन सा है, तो आप जापानी भाषा में कहेंगे दोरे गा इचिबांग ओइशी देसु का।
1: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
2: ओइशी देसु, इचिबान ओइशी देस। दोरे गा इचिबान ओइशी देस का?
0: अब एक बातचीत सुनते हैं जिसमें एक ग्राहक उपहारों की दुकान में मिठाई चुनने की कोशिश कर रही है।
3: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
4: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा
3: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
0: सबसे लोकप्रिय कौन सा है?
1: इस वाक्य में
2: निंकी गा अरिमासु
1: का अर्थ है लोकप्रिय है, जिसमें से
2: निंकी
1: का मतलब है लोकप्रिय और
2: अरिमासु
1: है क्रिया
2: अर
1: यानी होना का मास रूप।
0: इसके बाद पुरुष ने उत्तर दिया
4: कोरे गा ओसुसुमे देसु,
1: ये वाला बढ़िया है।
0: यहाँ
2: कोरे
0: का मतलब है ये वाला और
2: ओसुसुमे
0: का भाव है बढ़िया। अपना सुझाव देते समय इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
1: तो दोस्तों, आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
2: निंकी गा अरिमासु, इचिबान निंकी गा अरिमासु। दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। आप एक दुकान में सूटकेस खरीदने आए हैं। आप पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता के लिए जापानी शब्द है
2: यासुई, यासुई।
0: तो कोशिश कीजिए
4: दोरे गा इचिबान यासुई देसु का? दोरे गा इचिबान यासुई देसु का?
1: अब मान लीजिए कि आप एक जापानी रेस्तरां में मेन्यू देख रहे हैं। उसमें बहुत सारे सेट हैं और आप जानना चाहते हैं कि सबसे किफायती कौन सा है। किफायती के लिए जापानी शब्द है
2: ओतोकुना, ओतोकुना,
1: जो एक ना विशेषण है।
0: याद रखिएगा, वाक्य के अंत में ना विशेषण का इस्तेमाल करने के लिए अंत के ना को देस में बदलते हैं। तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो दुकानदार की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
5: ご注文は？
2: ご注文は？
0: का अर्थ है ऑर्डर देना चाहेंगे। ग्राहकों से ऑर्डर लेते समय रेस्तरां के बैरे इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं।
2: चूमोंग
0: का अर्थ है ऑर्डर, और ग्राहक को सम्मान देने के लिए इस शब्द से पहले गो लगाया गया है।
1: वाक्य के अंत में लगा वा विषय सूचक है। वाक्य यहीं अधूरा छोड़ दिया गया है, लेकिन ग्राहक संदर्भ से इसका भाव समझ सकते हैं, जो है ऑर्डर देना चाहेंगे या क्या लेंगे।
0: आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
6: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
6: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना। आज हम बता रहे हैं रामेन के बारे में।
1: दोस्तों, रामेन मैदे से बने एक तरह के पतले नूडल्स हैं, जिन्हें उबालकर गर्म सूप में डालते हैं और ऊपर से उबला अंडा, मांस, सब्जियां और अन्य चीजें रखकर परोसते हैं।
0: मूल रूप से ये व्यंजन चीन से है, लेकिन जापान में इसके रूप में कई बदलाव आए हैं और अब ये जापान के प्रमुख व्यंजनों में गिना जाता है।
1: रामेन का सूप कई तरह का हो सकता है, जैसे चिकन या पोर्क की हड्डी या समुद्री खाद्यों से बना सूप। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए मिसो यानी सोयाबीन के पेस्ट, नमक, सोया सॉस और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है।
0: वैसे रामेन के नए और अनूठे रूप विकसित होते जा रहे हैं, जैसे चीज या ढेर सारी क्रीम वाला रामेन, और अलग अलग क्षेत्रों में इस व्यंजन की अलग अलग विशेषताएं भी देखी जा सकती हैं।
1: अगर जापान आने का मौका मिले तो ये नूडल्स भी जरूर चख कर देखिएगा।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में फोटोग्राफर मिया एक संगीत प्रस्तुति में जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 1 सितंबर मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। नेपाल चीन सीमा पर अचानक आई प्रलयकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1003 हो गई है। बचाव कर्मी 4,400 से अधिक लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन भारी मशीनरी के अभाव में उनके प्रयास बाधित हो रहे हैं। मंगलवार को नेपाल के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार की बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। 5 जापानी नागरिकों सहित 3,900 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। वहीं सीमा के दूसरी ओर चीन के सरकारी मीडिया ने अपने यहां मृतकों की संख्या 16 है और लापता लोगों की संख्या 540 से अधिक बताई है। नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में सेना और पुलिस के लगभग 10,000 जवान तैनात किए गए हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे को पहुंचे भारी नुकसान और मलबा हटाने वाली भारी मशीनरी के अभाव में तलाश व बचाव कार्य धीमी गति से चल रहे हैं। नेपाल के रसुआ और नुवाकोट जिलों में बचाव कार्य जारी है, जहां पन बिजली घरों में 900 से अधिक लोग फंसे हुए हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच करीब एक महीने में पहली बार हुए हमलों के बाद तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में चिंता बढ़ती जा रही है कि लड़ाई और तेज हो सकती है। फॉक्स न्यूज़ ने सोमवार को खबर दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन इंटरव्यू में उनसे कहा कि जॉर्डन में अमेरिकी अड्डों पर हुए ईरानी हमलों का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ईरान को करारा जवाब देने का संकल्प लिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि उनके साथ किसी समझौते की उम्मीद की जा सकती है। उधर ईरानी मीडिया ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के हवाले से बताया कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एक अवैध बड़ा टैंकर बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया है, लेकिन अमेरिका की केंद्रीय कमान ने IRGC के दावों को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी जहाज़ बारूदी सुरंग की चपेट में नहीं आया है। इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने उत्तरी कैरोलिना के एशविल में आयोजित वित्त मंत्रियों की G20 बैठक में ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों के बारे में पत्रकारों से बात की। गौरतलब है कि अमेरिका इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। उन्होंने कहा, वे इन प्रतिबंधों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अगर आप ईरानी नेताओं के पिछले 10 दिनों के बयानों पर गौर करें, तो आप देखेंगे कि वे अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर सदमे में हैं। बेसर ने कहा कि ईरानी नेता आर्थिक रूप से पिछड़ने के कारण हिंसक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था का पतन होना ज़रूरी नहीं है, सरकार को बस होश में आने की ज़रूरत है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने किर्गिस्तान में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पेजेशकियान राजनयिक समाधान तलाश रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान अमेरिका के साथ हुए समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए तैयार है, बशर्ते अमेरिका भी अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करे। अमेरिका G20 के वित्तीय प्रमुखों की बैठक की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा की जा रही है। वैश्विक आर्थिक जोखिम और उनसे निपटने के तरीके शुरुआती दौर की चर्चा के मुख्य विषय रहे। उत्तरी कैरोलिना के एशविल शहर में आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक के दौरान अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। बेसेंट ने कहा, आज यहाँ हमारा लक्ष्य विकास का अपना संदेश दोहराना है, क्योंकि दुनिया कर्ज में डूबी हुई है। वैश्विक वित्तीय संकट और कोविड दोनों के बाद इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका विकास ही है। उन्होंने विश्वास जताया कि कई नेता इस विचार के प्रति सकारात्मक होंगे। ये बैठक अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के साए में की जा रही है। प्रतिभागियों ने ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से जुड़ी मुद्रास्फीति के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की चिंता और इस जोखिम से निपटने के उपायों पर चर्चा की। माना जा रहा है कि उन्होंने अहम खनिज संसाधनों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में भी बात की। G7 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक भी आयोजित की जा रही है। माना जाता है कि वे ईरान पर अमेरिका के नए आर्थिक प्रतिबंधों और वित्तीय तंत्रों पर उन्नत AI मॉडलों के खतरों पर भी चर्चा करेंगे।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान सरकार के मानक दीर्घावधि बंध पत्रों पर मिलने वाला लाभ लगभग 30 वर्षों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। देश की वित्तीय हालत से जुड़ी चिंताओं के चलते निवेशक बंध पत्र बेच रहे हैं। मंगलवार को 10 वर्षीय बंध पत्रों की ब्याज दर 3% तक पहुंच गई। ब्रोकरेज कंपनी जापान बॉन्ड ट्रेडिंग के अनुसार ये अक्टूबर 1996 के बाद का सर्वोच्च स्तर है। बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दरों में समय पूर्व वृद्धि की अटकलें और अमरीकी बंधपत्रों की ब्याज दरें बढ़ने की आशंकाएं बिकवाली का दबाव बना रही हैं। प्रमुख जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता अपने डाटा सेंटर

0: विशेषज्ञता रखती है। दोनों कंपनियों की विशेषताएं घरेलू और विदेशी स्तर पर उसके डाटा सेंटर व्यवसायों को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एक अधिकारी ने कुशल ऊर्जा उपयोग की बढ़ती आवश्यकता की ओर इशारा करते हुए कहा कि डाटा सेंटरों, कारखानों और इमारतों में इस तकनीक की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक हिस्से पुर्जों की निर्माता कंपनी TDK डाटा सेंटरों के लिए प्रशीतन उपकरणों की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से हिस्से पुर्जों की एक अमरीकी कंपनी का अधिग्रहण करने जा रही है। उधर हिताची ने घोषणा की है कि वो एक कनाडाई कंपनी का अधिग्रहण करने जा रही है जो डाटा सेंटर के ट्रांसफॉर्मर के हिस्से पुर्जे बनाती है।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK World जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 27वें पाठ में ये पूछना सीखेंगे कि कई विकल्पों में से सबसे अच्छा कौन सा है।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम आज टोक्यो में रामेन की एक प्रसिद्ध दुकान में आई है। हारूसान हाउस का निवासी काइतो भी उसके साथ है। रेस्तरां में ऑर्डर देते समय ताम को यूकी की बात याद आई। यूकी एक जापानी छात्र है जो संगीत का अध्ययन कर रहा है और ताम से उसकी मुलाकात वियतनाम में स्वयं सेवकों के रूप में काम करते हुए हुई थी।
0: तो आइए सुनते हैं 27वें पाठ की बातचीत।
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番おいしいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले दुकानदार ने ताम और काइतो से कहा,
2: गोचुमों वा?
0: ऑर्डर देना चाहेंगे?
1: फिर काइतो ने ताम से पूछा,
2: ताम-सान, नानी सुरु?
0: ताम, क्या लोगी?
1: ताम को समझ नहीं आया कि कौन सा व्यंजन चुने, इसलिए उसने काइतो से पूछा,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
1: सबसे स्वादिष्ट कौन सा है?
0: काइतो ने जवाब दिया,
2: मिसो रामेन गा ओसुसुमे दा यो।
0: मिसो रामेन बढ़िया होता है।
1: ताम सोचने लगी,
3: मिसो रामेन।
0: तभी उसे वियतनाम में यूकी से हुई बातचीत याद आई।
2: निहोन नो रामेन वा ओइशी यो।
0: जापानी रामेन स्वादिष्ट होता है।
2: बोकु वा मिसो रामेन गा सुकी नांदा।
0: मुझे मिसो रामेन पसंद है।
1: तो ताम ने दुकानदार से कहा,
3: वताशी मिसो रामेन नी शिमास।
1: मैं मिसो रामेन लूंगी।
0: लगता है मिसो रामेन के साथ ताम की कुछ पुरानी यादें भी लौट आई हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
1: यानी सबसे स्वादिष्ट कौन सा है? ये वाक्य सीखकर आप पूछ सकेंगे कि तीन या अधिक चीजों में से सबसे बढ़िया कौन सी चीज है।
0: इस वाक्य में
4: दोरे
0: का अर्थ है कौन सा, उसके बाद आया है गा, जिससे पता चलता है कि
4: दोरे
0: इस वाक्य का विषय है।
4: इचिबान
1: का अर्थ है पहला नंबर या सबसे, और
4: ओइशी
1: का अर्थ है स्वादिष्ट, इसलिए
4: इचिबान ओइशी
1: का अर्थ है सबसे स्वादिष्ट।
0: अंत में लगा है
4: देस का,
0: और अंतिम ध्वनि का सुर ऊंचा है, जिसका मतलब है कि ये प्रश्न है।
1: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि तीन या अधिक चीजों में से किसी एक को

0: किसी विशेषता के आधार पर दूसरी चीजों की तुलना में सबसे आगे बताते समय
1: 一番
0: का उपयोग होता है. जैसे अगर आप कहना चाहते हो सबसे स्वादिष्ट तो
1: 美味しい
0: यानी स्वादिष्ट के पहले
1: 一番
0: लगाकर बनेगा
1: 一番美味しい.
2: अगर आप कई चीजों में से किसी एक के बारे में पूछना चाहते हो तो वाक्य के शुरू में कहेंगे
1: どれが一番.
2: इसमें
1: どれ
2: प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है कौन सा.
0: अब अगर आपको पूछना है कि सबसे स्वादिष्ट कौन सा है तो आप जापानी भाषा में कहेंगे どれが इचिबां ओइशी देसु का.
2: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए.
1: ओइशी देसु, इचिबां ओइशी देसु, どれが इचिबां ओइशी देसु का.
0: अब एक बातचीत सुनते हैं जिसमें एक ग्राहक उपहारों की दुकान में मिठाई चुनने की कोशिश कर रही है.
2: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ. पहले महिला ने पूछा
0: सबसे लोकप्रिय कौन सा है.
2: इस वाक्य में
1: निंकी गारिमस
2: का अर्थ है लोकप्रिय है, जिसमें से
1: निंकी
2: का मतलब है लोकप्रिय और
1: अरिमस
2: है क्रिया
1: अर
2: यानी होना का मास रूप.
0: इसके बाद पुरुष ने उत्तर दिया
3: कोरेगा ओसुमे देसु,
2: ये वाला बढ़िया है.
0: यहाँ
1: कोरे
0: का मतलब है ये वाला और
1: ओसुसुमे
0: का भाव है बढ़िया. अपना सुझाव देते समय इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं.
2: तो दोस्तों आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए.
1: निंकी गा अरिमासु, इचिबान निंकी गा अरिमासु, दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का.
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए. आप एक दुकान में सूटकेस खरीदने आए हैं. आप पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है. सस्ता के लिए जापानी शब्द है
1: यासुई, यासुई.
0: तो कोशिश कीजिए.
3: दोरे गा इचिबान यासुई देसु का. दोरे गा इचिबान यासुई देसु का.
2: अब मान लीजिए कि आप एक जापानी रेस्तरां में मेन्यू देख रहे हैं. उसमें बहुत सारे सेट हैं और आप जानना चाहते हैं कि सबसे किफायती कौन सा है. किफायती के लिए जापानी शब्द है
1: ओतोकुना, ओतोकुना,
2: जो एक ना विशेषण है.
0: याद रखिएगा वाक्य के अंत में ना विशेषण का इस्तेमाल करने के लिए अंत के ना को देस में बदलते हैं. तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए.
3: どれが一番お得ですか?
2: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो दुकानदार की पंक्ति है. आप भी इसे याद कर लीजिए.
4: ご注文は?
0: का अर्थ है ऑर्डर देना चाहेंगे. ग्राहकों से ऑर्डर लेते समय रेस्तरां के बैरे इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं.
1: चूमुंग
0: का अर्थ है ऑर्डर और ग्राहक को सम्मान देने के लिए इस शब्द से पहले गो लगाया गया है.
2: वाक्य के अंत में लगा वा विषय सूचक है. वाक्य यहीं अधूरा छोड़ दिया गया है, लेकिन ग्राहक संदर्भ से इसका भाव समझ सकते हैं, जो है ऑर्डर देना चाहेंगे या क्या लेंगे.
0: आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं.
4: ご注文は?タムさん、何にする?
5: どれが一番おいしいですか?
4: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
5: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
5: 私、味噌ラーメンにします。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना। आज हम बता रहे हैं रामेन के बारे में।
2: दोस्तों, रामेन मैदे से बने एक तरह के पतले नूडल्स हैं जिन्हें उबालकर गर्म सूप में डालते हैं और ऊपर से उबला अंडा, मांस, सब्जियां और अन्य चीजें रखकर परोसते हैं।
0: मूल रूप से ये व्यंजन चीन से है, लेकिन जापान में इसके रूप में कई बदलाव आए हैं और अब ये जापान के प्रमुख व्यंजनों में गिना जाता है।
2: रामेन का सूप कई तरह का हो सकता है, जैसे चिकन या पोर्क की हड्डी या समुद्री खाद्यों से बना सूप। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए मिसो यानी सोयाबीन के पेस्ट, नमक, सोया सॉस और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है।
0: वैसे रामेन के नए और अनूठे रूप विकसित होते जा रहे हैं, जैसे चीज या ढेर सारी क्रीम वाला रामेन, और अलग अलग क्षेत्रों में इस व्यंजन की अलग अलग विशेषताएं भी देखी जा सकती हैं।
2: अगर जापान आने का मौका मिले तो ये नूडल्स भी जरूर चख कर देखिएगा।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
2: अगले पाठ में फोटोग्राफर मिया एक संगीत प्रस्तुति में जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: से सबसे मजेदार चीज कौन सी है पूछना हो तो दोरे का इचिबान ओइशी देसु का पूछेंगे, ठीक है ना?
1: जी बिल्कुल ठीक।
0: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
2: ओइशी देसु, इचिबान ओइशी देसु, दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का।
0: जी सामीन, उम्मीद है आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
1: अब सबसे बेहतर के इंतखाब से मुतालिक एक मकालमा सुनिए। एक ग्राहक जापानी मिठाइयों की दुकान में है और बेहतरीन मिठाई का इंतखाब करना चाहता है।
3: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
4: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
1: अब इस मकालमे की तशरीह।
3: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
0: कौन सी सबसे मकबूल है?
1: निंकी गा अरिमासु यानी मकबूल है। इसमें निंकी या मकबूल दरअसल ना इसमें सिफत है और आरिमस फेल आरू यानी होना की मस शक्ल है।
4: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
0: मेरी तजवीज़ ये है।
1: कोरे यानी ये और ओसुसुमे यानी तजवीज़ या सिफारिश।
0: तो सुनिए और दोहराइए।
2: निंकी गा आरिमस, इचिबान निंकी गा आरिमस, どれが一番人気がありますか？
1: अब कुछ और खसूसियात में अव्वल मालूम करने की मशक करें। फर्ज करें कि आप सूटकेस खरीदने के लिए किसी दुकान में हैं और दुकानदार से पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता की जापानी है
2: यासुई, यासुई।
1: तो सामीन कोशिश करें।
4: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
1: अब फर्ज करें कि आप किसी रेस्तरां में हैं जहां बहुत सी अकसाम के सेट मेन्यू हैं। आपको सेट में मौजूद हर चीज़ की अलग अलग कीमत नहीं मालूम, चुनांचे आप वेटर से पूछना चाहते हैं कि इनमें सबसे बाकिफायत सेट कौन सा है। बाकिफायत की जापानी है
2: ओतोकुना, ओतोकुना।
1: ये ना इसमें सिफत है। जब ना इसमें सिफत जुमले के आखिर में हो तो उसका आखिरी हिस्सा ना हटाकर उसकी बजाय देस लगाया जाता है। तो सामीन आप किस तरह पूछेंगे सबसे बाकिफायत कौन सा है?
4: दोरे गा इचिबान ओतोक देसु का? दोरे गा इचिबान ओतोक देसु का?
0: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
1: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला मकालमे में वेटर ने इस्तेमाल किया है
5: गोचुमोन वा।
1: गोचुमोन वा के मायने हैं आप क्या लेंगे। रेस्तरां या कैफे में वेटर ग्राहक से ऑर्डर लेने के लिए ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। चूमोन का मतलब है ऑर्डर। इससे कबल का गो ग्राहक को इज्जत देने के लिए इस्तेमाल होता है जबकि बाद का वा मौजू को जाहिर करता है। यानी गो चूमोन वा का लफ्जी तर्जुमा हुआ आपका ऑर्डर। इसके बाद का हिस्सा क्या है बगैर कहे भी वाज़ेह है, इसलिए हज़्फ कर दिया गया है।
0: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज़ में सुनिए।
6: गो चूमोन वा,
7: गो चूमोन वा,
6: गो चूमोन वा।
1: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें कायतो मुख्तलिफ चीज़ों में से इंतखाब पूछता है।
5: ご注文は？タムさん、何にする？
8: どれが一番おいしいですか？
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
8: 味噌ラーメン。
9: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
8: 私、味噌ラーメンにします。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: और अब खाने के शौकीन कायतो के मशहूरों का कॉर्नर। आज का मौजू रामेन है।
1: रामेन नूडल्स डिश है। गुंधे हुए आटे की बारीक पट्टियों या नूडल्स को गर्म पानी में उबालकर प्याले में सूप के साथ पेश किया जाता है। इसमें ऊपर से उबले हुए अंडे, गोश्त के पार्चे या सब्जियों जैसी टॉपिंग्स डाली जाती हैं। ये बुनियादी तौर पर चीनी पकवान है। तमाम जापान में मुनफरद तब्दीलियों से गुजरने के बाद अब ये जापान की नुमाइंदा डिशों में से एक है।
0: वैसे रामेन कई अकसाम के जायकों में भी दस्तयाब है।
1: जी हाँ, रामेन का सूप मुर्ग और खिंजीर की हड्डियों या सी फूड वगैरह से बनता है। जायके के लिए इसमें मिसो की फलियों का पेस्ट, नमक या सोया सॉस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई चीज़ नहीं खाते तो पहले से उसके अज्जा दरियाफ्त कर लेना बेहतर होगा। अब बाज़ दुकानों में हलाल, एलर्जी से पाक یہ صرف سبزیوں کے اجزاء سے تیار کردہ رامن بھی دستیاب ہیں۔
0: اور اب تو رامن کے نت نئے ذائقے بھی دستیاب ہیں۔
1: جی ہاں، باورچی نئے ذائقوں کی تیاری جاری رکھتے ہیں۔ مثلا اب پنیر اور گاڑھی کریم کے ذائقے بنائے گئے ہیں۔ کئی علاقوں میں وہاں کے مخصوص انداز کے رامن بھی ہیں۔ مقامی کھانوں میں دلچسپی رکھنے والے افراد جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کے مقامی ذائقوں سے ضرور لطف اندوز ہوتے ہیں۔

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 1 सितंबर मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। नेपाल चीन सीमा पर अचानक आई प्रलयकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1003 हो गई है। बचाव कर्मी 4,400 से अधिक लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन भारी मशीनरी के अभाव में उनके प्रयास बाधित हो रहे हैं। मंगलवार को नेपाल के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार की बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। 5 जापानी नागरिकों सहित 3,900 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। वहीं सीमा के दूसरी ओर चीन के सरकारी मीडिया ने अपने यहां मृतकों की संख्या 16 है और लापता लोगों की संख्या 540 से अधिक बताई है। नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में सेना और पुलिस के लगभग 10,000 जवान तैनात किए गए हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे को पहुंचे भारी नुकसान और मलबा हटाने वाली भारी मशीनरी के अभाव में तलाश व बचाव कार्य धीमी गति से चल रहे हैं। नेपाल के रसुआ और नुवाकोट जिलों में बचाव कार्य जारी है, जहां पन बिजली घरों में 900 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच करीब एक महीने में पहली बार हुए हमलों के बाद तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में चिंता बढ़ती जा रही है कि लड़ाई और तेज हो सकती है। फॉक्स न्यूज़ ने सोमवार को खबर दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन इंटरव्यू में उनसे कहा कि जॉर्डन में अमरीकी अड्डों पर हुए ईरानी हमलों का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ईरान को करारा जवाब देने का संकल्प लिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि उनके साथ किसी समझौते की उम्मीद की जा सकती है। उधर ईरानी मीडिया ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के हवाले से बताया कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एक अवैध बड़ा टैंकर बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया है, लेकिन अमेरिका की केंद्रीय कमान ने IRGC के दावों को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी जहाज बारूदी सुरंग की चपेट में नहीं आया है। इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने उत्तरी कैरोलिना के एशविल में आयोजित वित्त मंत्रियों की G20 बैठक में ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों के बारे में पत्रकारों से बात की। गौरतलब है कि अमेरिका इस बैठक की मेज़बानी कर रहा है। उन्होंने कहा, वे इन प्रतिबंधों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अगर आप ईरानी नेताओं के पिछले 10 दिनों के बयानों पर गौर करें, तो आप देखेंगे कि वे अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर सदमे में हैं। बेसर ने कहा कि ईरानी नेता आर्थिक रूप से पिछड़ने के कारण हिंसक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था का पतन होना ज़रूरी नहीं है, सरकार को बस होश में आने की ज़रूरत है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने किर्गिस्तान में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पेजेशकियान राजनयिक समाधान तलाश रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान अमेरिका के साथ हुए समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए तैयार है, बशर्ते अमेरिका भी अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करे। अमेरिका G20 के वित्तीय प्रमुखों की बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा की जा रही है। वैश्विक आर्थिक जोखिम और उनसे निपटने के तरीके शुरुआती दौर की चर्चा के मुख्य विषय रहे। उत्तरी कैरोलिना के एशविल शहर में आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक के दौरान अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। बेसेंट ने कहा, आज यहां हमारा लक्ष्य विकास का अपना संदेश दोहराना है, क्योंकि दुनिया कर्ज में डूबी हुई है। वैश्विक वित्तीय संकट और कोविड दोनों के बाद इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका विकास ही है। उन्होंने विश्वास जताया कि कई नेता इस विचार के प्रति सकारात्मक होंगे। ये बैठक अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के साए में की जा रही है। प्रतिभागियों ने ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से जुड़ी मुद्रास्फीति के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की चिंता
और इस जोखिम से निपटने के उपायों पर चर्चा की। माना जा रहा है कि उन्होंने अहम खनिज संसाधनों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में भी बात की। G7 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक भी आयोजित की जा रही है। माना जाता है कि वे ईरान पर अमेरिका के नए आर्थिक प्रतिबंधों और वित्तीय तंत्रों पर उन्नत AI मॉडलों के खतरों पर भी चर्चा करेंगे।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान सरकार के मानक दीर्घावधि बंध पत्रों पर मिलने वाला लाभ लगभग 30 वर्षों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। देश की वित्तीय हालत से जुड़ी चिंताओं के चलते निवेशक बंध पत्र बेच रहे हैं। मंगलवार को 10 वर्षीय बंध पत्रों की ब्याज दर 3% तक पहुंच गई। ब्रोकरेज कंपनी जापान बॉन्ड ट्रेडिंग के अनुसार ये अक्टूबर 1996 के बाद का सर्वोच्च स्तर है। बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दरों में समय पूर्व वृद्धि की अटकलें और अमरीकी बंधपत्रों की ब्याज दरें बढ़ने की आशंकाएं बिकवाली का दबाव बना रही हैं। प्रमुख जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता अपने डाटा सेंटर व्यवसायों का विस्तार करने के लिए विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि एआई के बढ़ते प्रचलन के बीच डाटा सेंटरों की वैश्विक मांग में वृद्धि देखी जा रही है। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक अमेरिका स्थित एक ऊर्जा संबंधी कंपनी का लगभग 220 अरब येन यानी लगभग 1.4 अरब डॉलर में अधिग्रहण करने जा रही है। ये अधिग्रहण ऐसे समय में होने जा रहा है जब इंजीनियर डाटा सेंटरों द्वारा बिजली की खपत कम करने के प्रयासों में जुटे हैं। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के अनुसार इस अमरीकी कंपनी का सॉफ्टवेयर बिजली की खपत की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है और मित्सुबिशी बिजली हासिल करने व वितरण करने के उपकरणों में विशेषज्ञता रखती है। दोनों कंपनियों की विशेषताएं घरेलू और विदेशी स्तर पर उसके डाटा सेंटर व्यवसायों को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एक अधिकारी ने कुशल ऊर्जा उपयोग की बढ़ती आवश्यकता की ओर इशारा करते हुए कहा कि डाटा सेंटरों, कारखानों और इमारतों में इस तकनीक की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक हिस्से पुर्जों की निर्माता कंपनी टीडीके डाटा सेंटरों के लिए प्रशीतन उपकरणों की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से हिस्से पुर्जों की एक अमरीकी कंपनी का अधिग्रहण करने जा रही है। उधर हिताची ने घोषणा की है कि वो एक कनाडाई कंपनी का अधिग्रहण करने जा रही है जो डाटा सेंटर के ट्रांसफॉर्मर के हिस्से पुर्जे बनाती है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: वियतनाम में स्वयं सेवकों के रूप में काम करते हुए हुई थी।
1: तो आइए सुनते हैं 27वें पाठ की बातचीत।
2: どれが一番おいしいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले दुकानदार ने ताम और काइतो से कहा,
1: ऑर्डर देना चाहेंगे?
0: फिर काइतो ने ताम से पूछा,
1: ताम क्या लोगी?
0: ताम को समझ नहीं आया कि कौन सा व्यंजन चुने, इसलिए उसने काइतो से पूछा, सबसे स्वादिष्ट कौन सा है?
1: काइतो ने जवाब दिया,
2: मिसो रामेन गा ओसुसुमे दा यो।
1: मिसो रामेन बढ़िया होता है।
0: ताम सोचने लगी,
3: मिसो रामेन।
1: तभी उसे वियतनाम में यूकी से हुई बातचीत याद आई।
4: निहोन नो रामेन वा ओइशी यो।
1: जापानी रामेन स्वादिष्ट होता है।
4: बोकु वा मिसो रामेन गा सुकी नांदा।
1: मुझे मिसो रामेन पसंद है।
0: तो ताम ने दुकानदार से कहा,
3: वताशी मिसो रामेन नी शिमास।
0: मैं मिसो रामेन लूंगी।
1: लगता है मिसो रामेन के साथ ताम की कुछ पुरानी यादें भी लौट आई हैं।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का,
0: यानी सबसे स्वादिष्ट कौन सा है। ये वाक्य सीखकर आप पूछ सकेंगे कि तीन या अधिक चीजों में से सबसे बढ़िया कौन सी चीज है।
1: इस वाक्य में
5: दोरे
1: का अर्थ है कौन सा, उसके बाद आया है गा, जिससे पता चलता है कि
5: दोरे
1: इस वाक्य का विषय है।
5: इचिबान
0: का अर्थ है पहला नंबर या सबसे, और
5: ओइशी
0: का अर्थ है स्वादिष्ट, इसलिए
5: इचिबान ओइशी
0: का अर्थ है सबसे स्वादिष्ट।
1: अंत में लगा है
5: देसु का,
1: और अंतिम ध्वनि का सुर ऊंचा है, जिसका मतलब है कि ये प्रश्न है।
0: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि तीन या अधिक चीजों में से किसी एक को किसी विशेषता के आधार पर दूसरी चीजों की तुलना में सबसे आगे बताते समय
5: इचिबान
0: का उपयोग होता है। जैसे अगर आप कहना चाहते हो सबसे स्वादिष्ट, तो
5: ओइशी
0: यानी स्वादिष्ट के पहले
5: इचिबान
0: लगाकर बनेगा
5: इचिबान ओइशी।
1: अगर आप कई चीजों में से किसी एक के बारे में पूछना चाहते हो तो वाक्य के शुरू में कहेंगे
5: दोरे गा इचिबान।
1: इसमें
5: दोरे
1: प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है कौन सा।
0: अब अगर आपको पूछना है कि सबसे स्वादिष्ट कौन सा है, तो आप जापानी भाषा में कहेंगे दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का।
1: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: ओइशी देसु, इचिबान ओइशी देसु, दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का।
0: अब एक बातचीत सुनते हैं जिसमें एक ग्राहक उपहारों की दुकान में मिठाई चुनने की कोशिश कर रही है।
6: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
7: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
6: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
0: सबसे लोकप्रिय कौन सा है।
1: इस वाक्य में
5: निंकी गा अरिमासु
1: का अर्थ है लोकप्रिय है, जिसमें से
5: निंकी
1: का मतलब है लोकप्रिय, और
5: अरिमासु
1: है क्रिया
5: अरु
1: यानी होना का मास रूप।
0: इसके बाद पुरुष ने उत्तर दिया,
7: कोरे गा ओसुसुमे देसु,
1: ये वाला बढ़िया है।
0: यहाँ
5: कोरे
0: का मतलब है ये वाला, और
5: ओसुसुमे
0: का भाव है बढ़िया। अपना सुझाव देते समय इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
1: तो दोस्तों, आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
5: निंकी गा अरिमासु, इचिबान निंकी गा अरिमासु।

0: どれが一番人気がありますか？
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। आप एक दुकान में सूटकेस खरीदने आए हैं। आप पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता के लिए जापानी शब्द है
0: यासुई। यासुई।
1: तो कोशिश कीजिए।
2: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
3: अब मान लीजिए कि आप एक जापानी रेस्तरां में मेन्यू देख रहे हैं। उसमें बहुत सारे सेट हैं और आप जानना चाहते हैं कि सबसे किफायती कौन सा है। किफायती के लिए जापानी शब्द है
0: ओतोकुना। ओतोकुना,
3: जो एक ना विशेषण है।
1: याद रखिएगा, वाक्य के अंत में ना विशेषण का इस्तेमाल करने के लिए अंत के ना को दिस में बदलते हैं। तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
3: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो दुकानदार की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
4: ご注文は？
0: ご注文は？
1: का अर्थ है ऑर्डर देना चाहेंगे। ग्राहकों से ऑर्डर लेते समय रेस्तरां के बैरे इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं।
0: चूमुंग
1: का अर्थ है ऑर्डर, और ग्राहक को सम्मान देने के लिए इस शब्द से पहले गो लगाया गया है।
3: वाक्य के अंत में लगा वा विषय सूचक है। वाक्य यहीं अधूरा छोड़ दिया गया है, लेकिन ग्राहक संदर्भ से इसका भाव समझ सकते हैं, जो है ऑर्डर देना चाहेंगे या क्या लेंगे।
1: आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
4: ご注文は？タムさん、何にする？
5: どれが一番おいしいですか？
4: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
5: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
5: 私、味噌ラーメンにします。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: अब हम लेकर आए हैं अंश, काइतो के साथ खाना पीना। आज हम बता रहे हैं रामेन के बारे में।
3: दोस्तों, रामेन मैदे से बने एक तरह के पतले नूडल्स हैं, जिन्हें उबालकर गर्म सूप में डालते हैं और ऊपर से उबला अंडा, मांस, सब्जियां और अन्य चीजें रखकर परोसते हैं।
1: मूल रूप से ये व्यंजन चीन से है, लेकिन जापान में इसके रूप में कई बदलाव आए हैं और अब ये जापान के प्रमुख व्यंजनों में गिना जाता है।
3: रामेन का सूप कई तरह का हो सकता है, जैसे चिकन या पोर्क की हड्डी या समुद्री खाद्यों से बना सूप। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए मिसो यानी सोयाबीन के पेस्ट, नमक, सोया सॉस और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है।
1: वैसे रामेन के नए और अनूठे रूप विकसित होते जा रहे हैं, जैसे चीज या ढेर सारी क्रीम वाला रामेन, और अलग अलग क्षेत्रों में इस व्यंजन की अलग अलग विशेषताएं भी देखी जा सकती हैं।
3: अगर जापान आने का मौका मिले तो ये नूडल्स भी जरूर चख कर देखिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
3: अगले पाठ में फोटोग्राफर मिया एक संगीत प्रस्तुति में जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये खबरें आप NHK World जापान की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। जापान के मयारी तवील मुद्दती हुकूमती बांड पर मुनाफा तकरीबन 30 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सरमायाकार मुल्क की मालियाती सेहत पर तशवीश के बायस बांड फरोख्त कर रहे हैं। मजकूरा 10 साल बांड का मुनाफा मंगल के रोज 3.0% तक पहुंच गया। ब्रोकरेज कंपनी जापान बांड ट्रेडिंग का कहना है कि ये वो सतह है जो अक्टूबर 1996 के बाद से नहीं देखी गई। बैंक ऑफ जापान की जानिब से शरह सूद में वक्त से पहले इजाफा होने के बारे में बढ़ती हुई कयास आराइयां और ये अम्र फरोख्त का दबाव बढ़ा रहा है कि अमरीकी खजाना के मुनाफों में इजाफा होगा। मसनूई जहानत के शोबे में तरक्की के दौरान दुनिया भर में बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र जापान की बरकी मसनूआत तैयार करने वाली बड़ी कंपनियां अपने डेटा सेंटर के कारोबार को वसत देने के लिए बैरून मुल्क कंपनियों को खरीद रही हैं। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक अमरीका में कायम तवानाई से मुतालिक कंपनी को खरीदने के लिए तकरीबन 220 अरब येन यानी तकरीबन 1.4 अरब डॉलर अदा करने का इरादा रखती है। ये खरीदारी ऐसे वक्त की जा रही है जब इंजीनियर्स डेटा सेंटर में बिजली की खपत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का कहना है कि अमरीकी कंपनी का बिजली की खपत की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए तैयार करदा सॉफ्टवेयर और जापानी कंपनी की बिजली वसूल करने और तकसीम करने के आलात से मुतालिक महारत मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क उसके डेटा सेंटर के कारोबार को फरोग देने में मदद देंगे। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एक एग्जीक्यूटिव ने बिजली के बाकिफायत इस्तेमाल की बढ़ती हुई ज़रूरत की तरफ इशारा करते हुए मजीद कहा कि डेटा सेंटर्स कारखानों और इमारतों में इस टेक्नोलॉजी की तलब बढ़ने की तवक्को है। बरकी मसनूआत बनाने वाली कंपनी TDK डेटा सेंटर्स के लिए कूलिंग आलात की फरोख्त बढ़ाने की गर्ज से अमरीकी मसनूआत साज कंपनी को खरीदने के लिए तैयार है। हिटाची ने ऐलान किया है कि वो डेटा सेंटर के ट्रांसफार्मर के पुर्जाजात बनाने वाली एक कैनेडियन कंपनी खरीद रही है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए NHK.JP/Urdu।

0: यू की याद आ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात वियतनाम में हुई थी, जहां उन्होंने एक साथ रजाकाराना सरगर्मियों में हिस्सा लिया था।
1: तो आइए सबक नंबर 27 का मखानवा सुनते हैं।
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
0: वेटर कायतो और ताम से पूछता है,
2: गोचुमोवा,
1: आप क्या लेंगे?
0: कायतो पूछता है,
2: ताम-सान, नानी सुरु?
1: ताम-सान, आप क्या लेंगी?
0: ताम फैसला नहीं कर पाती और पूछती है,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
1: कौन सा सबसे मजेदार है?
0: कायतो जवाब देता है,
2: मिसो रामेन गा ओसुसुमे दा यो।
1: मैं मिसो रामेन तजवीज करूंगा।
0: ताम जेरे लब कहती है,
3: मिसो रामेन।
1: मिसो रामेन।
0: ताम को याद आता है कि यूकी ने उसे वियतनाम में क्या बताया था।
4: निहोन नो रामेन वा ओइशी यो।
1: जापान का रामेन मजेदार है।
4: बोकु वा मिसो रामेन गा स्की नांदा।
1: मुझे मिसो रामेन पसंद है।
0: ताम यूकी की बात को याद करके कहती है,
3: वताशी मिसो रामेन नी शिमास।
1: मैं मिसो रामेन लूंगी।
0: लगता है मिसो रामेन ने ताम की पुरानी यादों को ताजा कर दिया है,
1: बल्कि उसके दिल के तारों को छेड़ दिया है। तो आइए आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: आज के सबक का कलीदी जुमला है, कौन सा सबसे मजेदार है?
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
0: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चीजों में से सबसे बेहतर के बारे में दरियाफ्त कर सकते हैं।
1: दोरे के मायनी है कौन सा, इसके बाद का गा जाहिर करता है कि दोरे जुमले का मौजू है, इचिबान का मतलब है अव्वल या सबसे ज्यादा, और ओइशी यानी मजेदार, चुनांचे इचिबान ओइशी का मतलब हुआ सबसे मजेदार, और आखिर में देस का लगाते हुए उठान के साथ अदायगी के जरिए जुमला सवालिया हो जाता है। आज का नुक्ता, मुख्तलिफ चीज़ों में से अव्वल नंबर की निशानदेही करने के लिए इच्चीबान का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जायके में अव्वल या सबसे मज़ेदार के लिए मज़ेदार यानी ओइशी से पहले इच्चीबान लगाकर इच्चीबान ओइशी बनाया जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों में से अव्वल नंबर के मुतालिक सवाल करने के लिए दोरेगा इचिबान पूछा जाएगा, इसमें दोरे के मायने है कौन सा,
0: यानी खाने पीने की कुछ चीजें सामने हो और उनमें से सबसे मजेदार चीज कौन सी है पूछना हो तो दोरेगा इचिबान ओइशी देसु का पूछेंगे, ठीक है ना?
1: जी बिल्कुल ठीक।
0: तो सामने सुनिए और दोहराइए।
5: ओइशी देसु, इचिबान ओइशी देसु, दोरेगा इचिबान ओइशी देसु का?
0: जी सामईन, उम्मीद है आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
1: अब सबसे बेहतर के इंतखाब से मुतालिक एक मकालमा सुनिए। एक गाहक जापानी मिठाइयों की दुकान में है और बेहतरीन मिठाई का इंतखाब करना चाहता है।
6: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
7: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
1: अब इस मकालमे की तशरीह।
6: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
0: कौन सी सबसे मकबूल है?
1: निंकी गा अरिमासु यानी मकबूल है। इसमें निंकी या मकबूल दरअसल ना इसमें सिफत है और अरिमासु फेल आरु यानी होना की मस शक्ल है।
7: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
0: मेरी तजवीज ये है।
1: कोरे यानी ये और ओसुसुमे यानी तजवीज या सिफारिश।
0: तो सुनिए और दोहराइए।
5: निंकी गा अरिमासु, इचिबान निंकी गा अरिमासु, दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
1: अब कुछ और